गई माफिक मागीले झुझुकिरा कहाँ मैले बिराए भानी कि मेरा दुई बाहुमा त ठोकी दे जन्म फ्लातेरो अनि त करिन दुई त धनको भतुवा।

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल कैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: कल्पवृक्ष बहुउद्देश्य नर्सरी फार्म भीमेश्वर नगरपालिका 3 चरीकोट भीमेश्वर नगरपालिकाको कार्यालयसँगै।
1: सामुदायिक पहुँचका लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।

0: आजुरा को बेठी सावनी आई रे चुमा पानी होरी ओ राजा रानी रानी आई उन संसार की नीराइले यो जीवन ऐसा ही सुख का था ना यो घर को पीराइले होरी ओ उकाली जन को सबले दे दूंगो गलाऊं दा गलदाई ना गारा को मंचे ना बिजे सामन दाना ही फल दाई ना
1: यो कालो बन्नी वेला गाऊंगी
2: ये शुरू करनी वेला ची की गाई था तो
1: शुरू में से बयाना को झूल के गाऊं सीता को तोपनी बाबा तिमरे बेटी सावनी आई रे तुम्हा पनी
0: हरी आवानों का चौई पाता पाके को खुर्शानी बागमती ताई अठमाई समझाऊंगी बिरसानी ओरी ओ शिरा मायरा सुना को शैली छाती मायरा उठाक ग्यांपा मायर तू हवल दरवाजे समल को साइनों पाक ओरी ओ
1: पहला तो चोपा दंगाऊं थे आज अपनी गाऊं थी अब किन्हाने उल मुल मालबीज किंजे बाब

0: प्रदेश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।

स्वतंत्र सैनिक रंगर पहले भात आगे रमाइले भात खाई दूध मन न मन वाला मेरो पाना दूध पानी पर्यो फेरलाई मुतै छु मचाई दागी गफान को लागे चौबी मेरो घरमा मनीलाई चामलको पिठो बेसा

0: Thank you, brother. Thank you very much. It... Come on.
1: Where's that woman, Elena?
0: Are you?
1: Why? No, I don't like it.
0: Baby, look, you're not coming here. आपको अच्छा लगने लगेगा और भी तो बच्चे रहते हैं यहाँ
1: मैं दिल्ली में नहीं रह सकता
0: नहीं आपको यहीं रहना है हॉस्टल में कुछ दिन समझे

0: Very good. और ये कौन है?
1: ये मैं हूँ और मेरे पापा।
0: आपके पापा चश्मा पहनते हैं?

प्रत्येक साताको शुक्रबार राति 8 बजे र पुनः प्रसारण आइतबार अपरान्ह 4 बजेको समाचार पछि कार्यक्रम गीति कथा। सुन्न नभुल्नुहोला रात्रिकालीन साहित्यिक प्रस्तुति कार्यक्रम गीति कथा।

0: देवरानी मुनिलाय बोलावाने पनी देवर वलम साथमा जेठानी दिलाय बोलावाने पनी बालोला काथमा घास काटनी कटराय सिलो के बटराय सिलो घर मेरो डाण गाँव शिल के मूर्खा पर भरे
1: अब गिर
0: पानी लो तिमला रिमी दिमी घाम लगे गाँव

नमस्कार रेडियो सैलुङ रेडियो सामुदायिक एफएम बैंड 107 MHz बाट म पति प्रसाद सापकोटा आज विक्रम सम्बत 2083 साल आषाढ कृष्ण पक्ष सन् 2026 जुन 30 तारिख आषाढ 16 गते मंगलबार परेवा तिथि अब स्तुति गरौं आयु द्रोण कुमार कैसरिया सक्षण कल्पय भरे।

राजा नहुष का इशारे दौलत ले परिपूर्ण होस पवन जाई नहीं परे का घरे मंडा खुन सवाले दुर्योधन समान कर्ण समान दानमा।

0: सामुदायिक पहुँचका लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: नमस्कार, मेरो बैतेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 7 बस्ने म झटक प्रसाद तिमल सिन्हा। म दुख केही दुई चारवटा भजन यसो गाउँ भनेर आएको यहाँसम्म। नमस्कार हजुर। जय गणेशा जय गणेशा जय गणेशा देवा, जय गणेशा जय गणेशा जय गणेशा देवा, गौरी माता पार्वती पिता महादेव, हरि हरि सदाई भरी भक्ति गरौं है, हरि हरि सदाई भरी भक्ति गरौं है, यो लोक दुख छोड़ी जन्म सुधारौं है, आरती का जय राधे राम जी का जय, आरती का जय राधे राम जी का जय, आरती गरौं प्रभु आती मा तुमारे, यो लोक दुख छोड़ी जन्म सुधारे, यो लोक दुख छोड़ी जन्म सुधारे, जय गणेशा जय गणेशा जय गणेशा देव, गौरी माता पार्वती पितै महादेव, हरि हरि सदै भरि भक्ति गरौं है, हरि हरि सदै भरि भक्ति गरौं है, श्री

जपौहारी लाई कृष्ण जपौहारी लाई एक दिन होइन दुई दिन होइन सधैं भरी लाई एक दिन होइन दुई दिन होइन सधैं भरी लाई।